0: जला के।
1: तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल।
2: 104.1 MHz क्वांटा Hang FM yang terbaik untuk anda.
3: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
4: Radio Malaysia, Hang FM.
5: Dapatkan info